0: ཆོང ཆོང ང ལ ན བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཐུག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེགང ཐུག པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: या तो पचों चंचो तीना शुनिंग अच्छी मतलब तेरंग के थिपा गार्ची के चंबा चंगुंड के नंगा फोटो चंचों दोर्जी निमा के शेनो के गायर सेमी बोपा से निश्चेपा जगा रोन्यों तंगसिक शा
3: रोन्यों आ दोर्जी निमा से रंग शापी काफ़ियों यार सेमुं बेपी चोरा से या ता तेरंग जाही निमा ला अन्यों को काप Lisha, can I say patron, Jixin, Kamate moti, Angung, Ganate mumum. Ama, Yamasella, Latunko, da, Koruru, Karmazon, Dunzum, Zumzum. Sankaram, Evden Karara, Katsul, Kyosuore, Karma, Tempa, Luxuri. Luxuga, Puganawe, Tachin, Yagatutore, Truni, Gapul, and Awe. Mentig, Kamur, Mare, Mio, Kyor, or Roma, Manga, Walas, and Loli, Laksate, Gasso. Ama mali nanga so amni longkha nanga so ya ta jalu uja sha ga za user cer kan la la nyer pa chung za chung ga za chung kar mu so dang kharara samban

아메리카 쇼지 일은 와르제 제물라 점지 정우 토비 다탄양 예스리 제제 송무홍기 스트치브 진도는 홍보 자미아르지 세직년 단돈 예스리 제무홍기 응아르진 도순 토른드 것이디 디잉이물다 일은라 챵제 치비 먹던 글줄 적부식 베버 자직생 인서 자미아르지 년들 레바논 토브쇼 제스리 제무홍기 존진시 비 사클니 세지르 ऐसेर जी हर जन गलचुल चंबु पे वर चार्जिंग शेजिंग वाला ती नंग यिलंग ला थाकर मगतुन गलचुल पे वांग दियोल ऐसेर जी मुखुंगी यिलंग का मगंबन मंगुर चंपु तुंग वर चार्जिंग शियोला ती निमल त मगतुन गलचुल पे सेसर लेबनन याकूब चंतुंग कंगा ची चिंग्यन जगवा तरना लेबनन जी चोंगली सालमु यितंतुन Lebanon ji yisri bar jen jiwa jindin jen tih tong war sun lima shi ba tang shirdi nguyen jir shi bar bambung shi jinsir.